मेरे आंगन पर नींद है होशियारी अपना जोखिम टालने भरे पारी पारी झाड़ी बूटी घास रखना।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्र
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस ग्रो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852288002 र 9842803000

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Studio time.
0: It's 7 p.m. Start the first start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका 5 सोलुखुम्बू

0: प्रतिशत दुर्घटना वा आपत का बेला चाहिए सहयोग का लागि छ वटा निशुल्क हटलाइन नंबर आफ्नो मोबाइल में सेव गरी राखौ।
1: प्रहरी सहयोग चाहिँदा 100,
0: दमकल का लागि 101,
1: एम्बुलेंस सेवा चाहिँदा 102,
0: ट्राफिक प्रहरी का लागि 103,
1: बाल बालिका खोज तलाश का लागि 104
0: र विपद व्यवस्थापन का लागि 1177।
1: यी नम्बरहरुमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
0: सार्वजनिक हित का लागि उज्यालोको अनुरोध।

0: Не пальцы, а не постоянно. Так, а не так, как не собственно, но руки अब इंटरनेट धीमे होना चिंतो स्मार्ट और सुरक्षित इंट्रोड्यूसिंग वाईफाई 6 विद सुविधु सुरक्षा
1: वाईफाई 6 में पाउंडस हाई स्पीड रिस्टेबल इंटरनेट
0: साथ ही सुविधु सुरक्षा ले तपाईंले राख्छ ऑनलाइन ब्राउजिंग मा सुरक्षित
1: हानिकारक साइट और सुरक्षित कंटेंट अब सबै इन्स्टेंट ब्लक हुन्छ
0: सुविधु चिंतो पनि सुरक्षित पनि सब जानकारी तथा बुकिंगका लागि
1: सुनाइ 4238888 अनि मुफ्तमा

0: सोलू एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: स्टूडियो टाइम इट्स 9 PM रात को 9 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुम नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलू एफएम सोलू एफएम मा अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू

0: का सबको सरोकार आज का बाल बालिका भोलि का सदनहार
1: बाल बालिका मधि होने कने दुर्व्यवहार कानून ने दंडनीय मानक तसर्थ कसै बाल बालिका दुर्व्यवहार नगरऊ उन्नी को अधिकार सुनिश्चित कर आपने तर्फवा सहयोग करू अनिवार्य रूप में विद्यालय पठाओ व बाल मनोभावना बुझे शिक्षण शिखर क्रियाकलाप में सहभागी कराओ
0: कभी कभी बाल बालिका मधि दुर्व्यवहार देखना सहर न बस संबंधित निकाय में उजुरी करूं बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सब को जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय हूं बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सब को जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय दू
1: अस्ट्रेलियन एड्स अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउंडेशन को सहयोग में यूपेटा द्वारा